मुख सो क्यों विसरै मेरी माए साचा साहेब साचा नाए रहाओ। साचे नाम के तिल वडियाई आख थके कीमत नहीं पाई जे सब मिलकै आखण पाहे वड्डा ना होवै घाट ना जाए ना उह मर ना होवै सोग देंदा रहै ना चूकै भोग गुण एहो होर नाही कोए ना को होआ ना को होए जेवड आप तेवड तेरी दात जिन दिन कर कै कीती रात खसम विसारै ते कम जात नानक नावै बाज सनात राग गुजरी महला चौथा हर के जान सतगुर सतपुरखा बिनो करौ गुर पास हम कीरे किरम सतगुर सरणाई कर दया नाम परगास।

रहाउ। हर जान के वड भाग वडेरे, जिन हर हर सरदा हर प्यास। हर हर नाम मिलै तृप्ता सह, मिल संगत गुण प्रगास। जिन हर हर हर रस नाम ना पाया, ते भागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जान सतगुर संगत पाई, तिन धुर मस्तक लिखिया लिखास। तन तन सत संगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम परगास। राग गुजरी महला पंजवा, काहे रे मन चित वह उदम। जा आहर हर जियो परया,

राग आशा महला चौथा सो पुरख एको ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगम अगम अपारा सब त्यावह सब त्यावह तुद जी हर सच्चे सिरजन हारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावह संत हो जी सब दुख विसारण हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एको पुरख समाना एक दाते एक पेखारी जी।

तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाणा। जो सेवह जो सेवह तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा। हर त्यावह हर त्यावह तुद जी से जान जुग मैं सुख वासी। से मुकत पाए जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी। जिन निरपाओ जिन हर निरपाओ त्याया जी तिन का पाओ सब गवासी। जिन सेवया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी। से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत पंडार जी भरे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन तू

एक पढ़े बहु सिमरत शास्त्र जी, कर क्रिया खाट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी, जो भाव है मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख अपरंपर करता जी, तुद जेवड अवर ना कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा, तू एको जी तू नेह चल करता सोई। तुद आपे पाव सोई वरत जी, तू आपे करह सो होई। तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सब सहका जानोई। आसा महला चौथा, तू करता सचियार मेंडा साई। जो तौ पावे सोई थीसी, जो तू देह सोई हों पाई। रहाओ सब तेरी तू सबने त्याया, जिसनो कृपा कर तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मन मुख गवाया, तुद आप विछोड़या आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछुड़या संजोगी मेल। जिसनो तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाने। जिन हर सेवया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर ना कोए। तू कर कर वेख जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दय रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा।

सबै करतारा मूरछा निज कर दय करिए सब बैरन को आज संगरिए पूरन होए हमारी आशा तोर भजन की।

निवरिय। पूजो सदा हमारे पच्छा, श्रीयस तुझ जू करे हो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंध दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाश।

पहव आप आपुनी बुद्ध है जेती बरनत पिन पिन तो है तेती तुमरा लखा न जाए पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक पयो राव कही पूपा अंडज जेरज से तज कीनी उत पूज खान बहुर राज दीनी कहूं फूल राजा हवै बैठा कहूं सिमट पयो शंकर इकैठा सगरी सृष्टि दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो राण काता जे अस तुझ तव सरनी परे तिनके दुष्ट दुखित हवै मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सबटा।

तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे नहर हो ताके ताप तनक मह हर हो रिद सिद कर्मो सब होई दुष्ट शाह श्वय सकै ना कोई एक बार जिन तुम्हें संभाल।

पौड़ी। तिथै तू समरथ जिथै कोए नाहे, ओथै तेरी राख अग्नि उदर माहे। सुन कै जम के दूत नाए तेरै छड जाहे, पहु जल बिखम असगा हो गुरु शब्दी पार पाहे। जिन कौ लगी प्यास अमृत से खाहे, कल मैं एहो पुन गुण गोविंद गाहे। सब सहनो किरपाल संभाले साहे साहे, बिरथा कोई ना जाए जे आवै तो दयाहे। सलोक महला पांजवा, अंतर गुर आराधना जिहवा जप गुर नाओ। नेत्री सतगुर पेखना श्रवणी सुनना गुर नाओ, सतगुर से तीरतया दरगह।

सत्संग जी बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वाज बोधि पाचे दसवीं प्रथम भगवती सिमर कहे गुरु नानक लई त्याय फिर अंकित गुरते अमरदास रामदास हुए सहाय अर्जुन हर गोबिंद नु सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याय ते सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरे आकर नौन दयावे ताय सब चाई हुए सहाय। दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब चाई हुए सहाय। दसा पातशाह ने पितरात्म स्वरूप साध ग्रंथ साहब के पाठ दर दर के खाते सह बोलो जी वाहे गुरु। गरीब नवाज आप जी दे पांच प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्त हटियां जपियां तपियां जिन्हें नाम जपया वन छकिया देख चलाई ते वाह दे के निड़ की तना प्यार त्यार नहीं कमाई तत्ते अंदर की बोलो जी वाहे गुरु। जन्ना सिंह सिंगणिया धर्म हे सी दिते बंद बंद कटवाए खोपरियां लुआईया चरफिया चढ़े आरे न चढ़ाए गए गुरुद्वारे सेवा कुर्बानियां की धर्म ने आया सी किसी देखे सब सत्संग दवाया तिना नहीं कमाई तत्ते अंदर की बोलो जी वाहे गुरु। पंजा तख्त गुरुद्वारा अंदर के बोलो जी वाहे गुरु। प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे नाम चेता है चित आमर का सर का सर्व सुख हो जहां जहां गुरु खालसा साहब ने चरिया देख देख की फतेह बृद की पहच पंथ की जीत श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बुरबाले बोलो जी वाहे गुरु। सिखा नु सिखी दान केस दान रैत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब दर्शन स्नान क्योंकि चंदे बुंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु। सिखा दा मन नीवा मत उचे मत पद के राखे आप वाहे गुरु। गुरु गरीब नवाज पंधे सदा सहाय दता दियो गुरुद्वारा ननकाना साहेब पंजा साहेब होर गुरुद्वारे गुरुधाम जिन्हां तों आप दे पंथ नूं छोड़िया गया हन कृष्ण दास ते सेवा संभाल दान अपने खालसा जी नूं बख्शो। हे ओटियां दी ओट गुरु ने आसरिया दे आसरे गुरु धन धन गुरु ग्रंथ तार जियो ग्रंथ साहब जियो दोहे कर जोड़ कर अरदास तुट पावे ताने रास। हे गरीब नवाज जी आपके चरण कामना के दास मिंदे आज बख्शिश दिता जियो आपके चरणा पितर गुरबाणी सुखमनी साहब संपूर्ण पाठ दिता ऐस वे संध्या समय जान के आपके चरणा सोध दार रह रास साडे पाठ कीते ने कृपा करो हो भुला चुका माफी बख्शो पढ़ी वे बाणी सोध के सत खन पुराण गुरबाणी।

ज्यो चलह जो वह दुख पाव है जम काल सह है सिर डंडा है। हर जन हर हर नाम समान है दुख जन्म मरण पव खंडा है। अविनाशी पुरुख पाया परमेश्वर बहु शोभ खंड ब्रह्मंडा है। हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डा है। जन नानक नाम आधार टेक है हर नाम में ही सुख मंडा है। राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा करो बिनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला। इहां खाट चलो हरला आगे वसन सुहेला। औद कटाए दिन सुरैनारे मन गुरमिल काज सवारे रहाओ। एहो संसार विकार संसे मैं तरियो ब्रह्म ज्ञानी। जिसह जगाए पिया वह एहो रस अकथक थात न जानी। जा को आए सोए बिहाजो हर गुर ते मने बसेरा। निज कर महल पावो सुख सहजे बहर न होए गो फेरा। अंतर जामी

बोला जी वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। अरदास ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए फिर अंगत गुरते अमरदास रामदास्या हो सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सुमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आईये। जिस डिठे सब दुख जाए तेक बहादुर सिमरिया करना निधावे ताए सब थाई होना सहाय दसवें पातशाह। गुरु गोबिंद सिंह जी सब थाई होना सहाय दसा पातशाह की जो धन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दीदार का ध्यान करके बोलना जी। धन धन श्री गुरु नानक देव गोविंद रूप सतगुरु। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी आप ज्या खिचन कमला पास अरदास बेनती जोदड़ी अरजोई आप ज्या का कोटान कोट शुकर लख लख धनवाद। अमृत वेले तो लैके इस वेले तक आप जाने अपने पवित्र पावन खुले दर्शन दीदारे बख्श के समूह संतानों ने हाल किया है। इस वेले आप जी के हजूर कीर्तन सुहेले साहब जी के पाठ हुए सुखासन की सेवा हुई। बाणी का पाठ करद्या सुखासन की सेवा करद्या अनेक ही प्रकार दियां भुलां गलतियां हो गई होणगियां जान बच्चे समझ के बख्श लो। अगो वास्ते शुद्ध स्पष्ट बाणी पढ़न की शुद्ध सेवा करन की मत बख्शनी। बाणी का भाव दर आई साध संगत दे हिरदे वसाणा दर आई साध संगत की हाजिरी प्रवान करना तिल भुल पिटावां प्रवान करनिया। इस वेले आप जा के हजूर अरदास बेनती जोदरी चार पैर दिन सुख नाल बतीत होया रात्रि आई भाणे अंदर सुख नाल बतीत कराउणा अमृत वेले दा जागना बख्शना। आप जी के पावन सुखासन साहब तैयार हैं आप जी अपने आसन ते विश्राम करो समूह संगतां नूं छुट्टियां बख्शो। अखरवाद घाट पड़िया भुल चुक माफ करना सरबत दे कारज रास करने सही संत प्यारे मेलने जिन्हां मिलिया तेरा नाम चितावे नानक नाम चढ़दी कला। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी।

प्रभु के सेवक काओ को ना पहुंचे, प्रभु के सेवक ऊचते ऊचे, जो प्रभु अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दैतिस प्रगटाया, निकी कीरी मैं काल राख है, भासम कर लस्कर कोट लाख है, जिसका शासन करत आप, ताको राखत देकर हाथ, मानस जतन करत बहु पांत, तिसके करत बिरथे जात, मारे न रख है अवर न कोय, सर्व जिया का राखा सोए, काहे सोच कराय रे प्राणी, जप नानक प्रभ अलख वेडाणी, बारंबार बार प्रभ जपी है, पी अमृत एहु मान तान त्रपी है, नाम रतन जिन गुरुमुख पाया, तिस किश अवर नाही दृष्टाया, नाम तन नामो रूप रंग, नामो सुख हर नाम का संग, नाम रास जो जान त्रिपताने, मन तन नामे नाम सुमाने, उठत बैठत सुवत नाम, कहो नानक जन कै सद काम, बोलो जस जिहबा दिन रात, प्रभ अपने जन की नी दात, करै भगत आत्म कै चाए, प्रभ अपने सिउ रहै सुमाए, जो हुआ होवत सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने, तिसकी महिमा कौन बखानो, तिसका गुण कह एक न जानो, आठ पहर प्रभ बसाए हजूरे, कहो नानक सही जन पूरे, मन मेरे तिनकी ओट ले, मन तन अपना तिन जान दे, जिन जान अपना प्रभु पछाता सो जान, सर्व थोक का दाता तिसकी शरण सर्व सुख पावै, तिसके दर्स सब पाप मिटावै, अवर स्यान पसगली शाड, तिस जन की तू सेवा लाग, आवन जान न होवे तेरा, नानक तिस जन के पूजो सद पैरा, सलोक सात पुरख जिन जानिया, सात गुरु तिसका नाओ, तिसकै संग सिख उदरै, नानक हर गुण गाओ, अष्टपदी सत गुर सिख की करै प्रतपाल, सेवक कौ गुर सदा दयाल, सिख की गुर दुरमत मल हिरै, गुर बचनी हर नाम उचरै, सत गुर सिख के बंधन काटै, गुर का सिख बेकार ते हटै, सत गुर सिख कौ नाम धन दे, गुर का सिख वडभागी है, सत गुर सिख का हलत पलत सवारै, नानक सत गुर सिख कौ जी नाल समारै, गुर के ग्रह सेवक जो रहै, गुर की आज्ञा मन में सहै, आपस कहो कर काश न जनावै, हर हर नाम हृदय सद तिहावै, मन बेचै सतगुर कै पास, ते सेवक के कारज रास, सेवा करत हुए नेह कामी, तिसको होत परापत स्वामी, अपनी कृपा जिस आप करे, नानक सो सेवक गुर की मत ले, बीस बिसवे गुर का मन मानै, सो सेवक परमेश्वर की गत जानै, बीस बिसवे गुर का मन मानै, सो सेवक परमेश्वर की गत जानै, सो सतगुर जिस हृदय हर नाउ, अनक बार गुर को बल जाओ, सर्ब निधान जी का दाता, आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता, ब्रह्म मैं जान जान मैं पार ब्रह्म, एकै आप नहीं कछु भरम, सह स्यान पलै न जाइए, नानक ऐसा गुर बड भागी पाइए, सफल दर्शन पेखत पुनीत, पर सत चरण गत निर्मल रीत, भेटत संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दर गाह गवे, सुन कर बचन करण अगाने, मन संतोख आत्म पतियां ने, पूरा गुरु अखियो जाका मंत्र, अमृत दृष्ट पेख होए संत, गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस पावे तिस लय मिलाए, जिहबा एक उस्त अनेक, सत पुरख पूर्ण बबेक, काहू बोलना पहुंचत प्राणी, अगम अगोचर प्रभ निरबानी, निराहार निरवैर सुखदाई, ताकि कीमत किने न पाई, अनिक भगत बंधन नित करै, चरण कमल हृदय सिमरै, सदबलहारी सत गुर अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने, एहु हर रस पावै जान कोए, अमृत पीवै अमर सो होए, उस पुरख का नाही कदे विनाश, जाके मन प्रगटे गुण तास, आठ पहर हर का नाम ले, साच उपदेश सेवक कौ दे, मोह माया के संग न लेप, मन मह रखे हर हर एक,

अंधकार दीपक प्रगासे, नानक परम मोह दुख तह तेनासे, तपत महे ठाड़ वरताई, आनंद पहया दुख नाठे पहाई, जन्म मरण के मिटे अंदेसे, साधु के पूर्ण उपदेसे, भाव चूका निरपाव हुए बसे, सगल ब्याद मनते खै नसे, जिस का सा तिन कृपा तहारी, साध संग जप नाम मुरारी, थित पाई चूके भ्रम गवन, सुन नानक हर हर जस श्रवन, निर्गुने आप सरगुण पियोही, कला तार जिन सगली मोही, अपने चरित प्रभ आप बनाए, अपनी कीमत आपे पाए, हर बिन दूजा नाही कोए, सर्ब निरंतर एको सोए, ओत पोत रव्या रूप रंग, पहे प्रगास साध कै संग, रच रचना अपनी कल तारी, अनक बार नानक बलहारी, सलोक साथ न चाले बिन भजन, बिख्या सगली शार, हर हर नाम कमावना, नानक एहो तन सार, अष्टपदी संत जना मिल करो विचार, एक सिमर नाम आधार, अवर उपाव सब मीत विसारो, चरण कमल रिद में उरतारो, करण कारण सो प्रभ समरथ, दृढ़ कर गहु नाम हर वथ, एहो तन संचह होवो भगवंत, संत जना का निर्मल मंत, एक आस राखो मन माहे, सर्व रोग नानक मिट जाहे, जिस धन को चार कुंट उठ तहवै, सो तन हर सेवा ते पावै, जिस सुख को नित बाछै मीत, सो सुख साधु संग परीत, जिस शोभा को करह भली करनी, सा शोभा भज हर की सरणी, अनको पावी रोग न जाए, रोग मिटै हर अवखत लाए, सर्व निदान मैं हरे नाम निधान, जप नानक दरगह प्रवान, मन प्रभु दौ हर कै नाए, दैत सुतावत आ बैठाए, ताको बिघन न लागै कोए, जाकै हृदय बसै हर सोए, कल ताती ठांडा हर नाऊ, सिमर सिमर सदा सुख पाओ, भौ बिन सह पूरन होए आस, भगत पाए आत्म प्रगास, तित कर जाए बसै अबिनासी, कहो नानक काटी जम फासी, तत विचार कहे जन साचा, जन्म मरै सो काचो काचा, आवागवन मिटै प्रभ सेव, आप त्याग शरण गुरुदेव, इयों रत्न जन्म का होए उधार, हर हर सिमर प्राण आधार, अनक उपाव न छूटन हारे, सिमरत सास्त बेद बीचारे, हर की भगत करहु मन लाए, मन बंशत नानक फल पाए, संग न चालस तेरै ताना, त्यों तू क्या लपटावह मूर्ख मना, सुत मीत कुटंब अरबनता, इन ते कहो तुम कवन सनाथा, राज रंग माया बिसथार, इन ते कहो कवन छुटकार, अस हसती रथ असवारी, झूठा डंप झूठ पासारी, जिन दिए तिस बुझै, ना बेगाना ना बिसार, नानक पशु ताना, गुरु की मत तुम लिहे याने, भगत बिना बहु डूबे सियाने, हर के भगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो चीत, चरण कमल राखू मन माहे, जन्म जन्म के किल बिख जाहे, आप जप हो अवरा नाम जपा वह, सुनत कहत रहत गत पा वह, सार भूत सत हर को नाओ, सहज सुभाए नानक गुण गाओ, गुण गावत तेरी उतरस मैल, बिन सजाए हो मैं बिख फैल, होहे अचिंत बसै सुख नाल, सास ग्रास हर नाम समाल, शाड़ सयानप सगली मना, शाड़ सयानप सगली मना, साध संग पावै सच तना, हर पूंजी सांच करो व्यवहार, इहां सुख दरगह जयकार, सर्व निरंतर एको देख, कहो नानक जाकै मस्तक लेख, एको जप एको सालाहे, एक सिमर एको मन आहे, एक सके गुण गाओ अनंत, मान तन जाप एक भगवंत, एको एक एक हर आप, पूरन पूर रहो प्रव्याप, अनिक बिस्थार एक ते पहे एक आराध, प्रशत गए मन तन अंतर एक प्रभराता, गुरु प्रसाद नानक एक जाता सलोक, फिरत फिरत प्रभ आया पर्यातो सरनाए, नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लाए, अष्टपदी जाचक जन जाचै प्रभ दान, कर कृपा देवहु हर नाम, साध जना की मांगो तूर, पार ब्रह्म मेरे सरदा पूर,
सदा सदा प्रभ के गुण गावो सास सास प्रभ तुम्हें प्यावो चरण कमल सिंह लागे प्रीत भगत करो प्रभ की नित नीत एक ओट एको आधार नानक मांगे नाम प्रभ सार प्रभ की दृष्ट महा सुख होए हर रस पावे बिरला कोए जिन चाखिया से जन त्रिपताने पूर्ण पुरख नहीं डोलाने सुपर परे प्रेम रस रंग उपजय चाओ साध कै संग परे सरन आन सब त्याग अंतर प्रगास आन दिन लिव लाग बड भागी जपया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए सेवक की मनसा पूरी पई सतगुर ते निर्मल मत लई जान काओ प्रभ होयो दयाल सेवक कीनो सदा निहाल बंधन काट मुक्त जन पाया जन्म मरण दुख भ्रम गया ऐश पुनी श्रद्धा सब पूरी रव रहया साध संग हजूरी जिसका साथन लिया मिलाए नानक भगती नाम समाए सो क्यों बिसरै जे काल न पाने सो क्यों बिसरै जे किया जाने सो क्यों बिसरै जिन सब किश दिया सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया सो क्यों बिसरै जे अगन में राखै गुर प्रसाद को बिरला लाखै सो क्यों बिसरै जे बिख ते काढ़ै जन्म जन्म का टूटा गांडै गुरपूरा है तत ए है बुझाया प्रभ अपना नानक जन तिहाया साजन संत करहो एहो काम आन त्याग जपहो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावहो आप जपहो अवरह नाम जपावहो भगत पाए तरिय संसार बिन भगती तन हो सी शार सर्व कल्याण सुख निद नाम बूढ़त जात पाए विश्राम सगल दुख का होवत नास नानक नाम जपाओ गुण तास उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ मन तन अंतर एही सुआओ नेत्रों पेख दर्श सुख होए मन बिगसै साध चरण धोए भगत जना कै मन तन रंग बिरला को पावै संग एक बस्त दी जय कर मया गुर प्रसाद नाम जप लया ताकि उपमा कही न जाए नानक रहया सर्व समाए प्रभ बख्शांद दीन दयाल भगत वशल सदा कृपाल अनाथ नाथ गोबिंद गोपाल सर्व कटा करत प्रतपाल आदि पुरख कारण करतार भगत जना के प्राण आधार जो जो जपै सो होए पुनीत भगत पाए लावै मन हीत हम निर्गुनियार नीच अजान नानक तुमरी सारन पुरख भगवान सर्व वैकुंठ मुक्त मोख पाए एक निमख हर के गुण गाए अनक राज भोग बढ़ियाई हर के नाम की कथा मन पाई बहु भोजन का प्रसंगीत रसना जपती हर हर नीत भली सो करनी सो बातनवंत हृदय बसे पूर्ण गुरमंत साध संग प्रभ देहो निवास सर्व सुख नानक प्रगास श्लोक सार गुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप आपन किया नानका आपे ही फिर जाप अष्टपदी जब अकार एकाशना दृष्टेता पाप पुन तब कहते होता जब तारी आपन सुन समादो तब बैर विरोध किस संग कुमात जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत तब हरख सोग कह किस व्यापत जब आपन आप पार ब्रह्म तब मो कहा किस होवत परम आपन खेल आप वरतीजा नानक करने हार ना दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुकत कहो किस कहो गनी जब एक हर अगम अपार तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए तब सेव सकत कहो कित ठाए जब आप ही आप अपनी ज्योत तर है तब कवन निडर कवन कत डरै आपन चले तो आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अभिनाशी सुख आपन आसन तह जन्म मरण कहो कहा बिनासन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो हो किस होए जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्रगुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर अगादे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे अपन आप ही अचर जा नानक आपन रूप आप ही उपर जा
जह निर्मल पुरख पुरख पात होता तह बिन मैल कहो क्या तोता। जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन कौ मान कौन अभिमान। जह स्वरूप केवल जगदीश तह शाल शिद्र लगत कहो कीस। जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावै तह किसै भूख कवन त्रिपतावै। करन करावन करने हार नानक करते का नाहीं सुमार। जब अपनी शोभा आपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सोत पाई। जय सर्व कला आप ही प्रवीण तह वेद कथेव कहा को चीन। जब आपन आप उरतार तौ सगन आप सगन कहा बिचार। जह आपन ऊच आपन आप नेरा तह कौन ठाकुर कौन कहिय चेरा। बिसमन बिसम रहे बिसमाद नानक अपनी गत जानहु आप। जह अशाल अशेद अभेद समाया ऊहा किसे व्यापत माया। आपस को आपे आदेश तेह गुण का नाही प्रवेश। जह एक एक एक भगवंता तह कौन अचिंत किस लागे चिंता। जह आपन आप पतियारा तह कौन कथा है कौन सुनने हारा। बहु बेअंत ऊच ते ऊचा नानक आपस को आपे पहुचा। जह आप रचियो प्रपंच आकार तेहो गुण मैं कीनो बिसथार। पाप पुन तै पई कहावत को नरक को सुर्ग बंशावत। आल जाल माया जंजाल हमें मुह परम पहपार। दुख सुख मान अपिमान अनक प्रकार कियो बखियान। दुख सुख मान अपमान अनक प्रकार कियो बखियान। आपन खेल आप कर देखै खेल संकोच तौ नानक एकै। जह अवगत भगत तह आप जह पसरे पसार संत प्रताप। दोहू पाक का आपे तनी उनकी शोभा उनहु बनी। आपे कौतक करे आनंद चोज आपे रास भोग निर्जोग। जिस भावै तिस आपन नाई लावै जिस भावै तिस खेल खिलावै। बेसुमार अथा अगंत अतोलै ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै। श्लोक जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तन हार। नानक एको पसरिया दूजा कह दृष्टार। अष्टपदी आप कथा आप सुनने हार आपे एक आप बिस्थार। जात सुभावे ता श्रेष्ठ उपाय अपने पाणे लय सुमाए। तुम ते पिन नहीं किश होए आपन सूत सब जगत परोए। जाको प्रभ जीओ आप बुझाए सच नाम सोई जन पाए। सो साम दर्शी तातका बेता नानक सगल श्रेष्ठ का जेता। जी जंत्र सबता कै हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ। जिस राख है तिस कोई न मारे सो मुआ जिस मन हो बिसारे। तिस ताज अवर कहा को जाए सब सिर एक निरंजन राय। जी की जुगत जाकर सब हाथ अंतर बाहर जानो साथ। गुने धान बेअंत अपार नानक दास सदा बलिहार। पूरन पूर रहे दयाल सब ऊपर होवत कृपाल। अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामे रहो व्याप। प्रत पालै जीअन बहुपांत जो जो रचियो सोते सहत्यात। जिस भावै तिस लय मिलाए भगत करै हर के गुण गाए। मन अंतर विश्वास करमान्या करन हार नानक एक जानिया। जन लगा हर एक नाए तिस की आस न बिरथी जाए। सेवको सेवा बनाई हुकम बूझ परम पद पाई। इस ते ऊपर नहीं विचार जाके मन बसया निरंकार। बंधन तोर पै निरवैर आन देन पूजह गुर के पैर। ए लोक सुखिए पर लोक सोहेले नानक हर प्रभ आपे मिले। साध संग मिल करो आनंद गुण गावहो प्रभ परमानंद। राम नाम तत करहो विचार दुर्लभ देगा करहो उधार। अमृत बचन हर के गुण गाओ प्राण तरन का यह सुहाओ। आठ पहर प्रभ पेखु नेरा मिटै अज्ञान बिनसै अंधेरा। सुन उपदेश हृदय बसावहो मन इच्छे नानक फल पावहो। हलत पलत दोए लेव सुवार राम नाम अंतर उरतार। पूरे गुर की पूरी दीखिया जिस मन बसै तिस साच परीखिया। मान तान नाम जपो ले वलाए दुख दर्द मन ते पहो जाए। सच व्यापार करहो व्यापारी दरगा निभ है केप तुम्हारी।
ਇਹ ਘਾਟੇ ਕਰਖੋ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਨਾਨਕ ਬਹੁਰ ਨ ਆਵੈ ਜਾਹੇ, ਤਿਸ ਤੇ ਦੂਰ ਕਹਾਂ ਕੋ ਜਾਏ, ਉਬਰੈ ਰਾਖਨ ਹਰ ਧਿਆਏ, ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ, ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਛੁਟੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੈ ਤਿਸ ਨਾਹੀ ਦੁਖ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਮਨ ਹੋਵਤ ਸੁਖ, ਚਿੰਤਾ ਜਾਏ ਮਿਟੇ ਅਹੰਕਾਰ, ਤਿਸ ਜਨ ਕਉ ਕੋਈ ਨ ਪਹੁੰਚਨ ਹਾਰ, ਸਿਰ ਉਪਰ ਠਾਢਾ ਗੁਰਸੂਰਾ, ਨਾਨਕ ਤਾਕੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ, ਮਤ ਪੂਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਾ ਕੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖਤ ਉਦਹਰਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਾ ਕੇ ਅਨੂਪ, ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁੰਦਰ ਹਰ ਰੂਪ, ਧਨ ਸੇਵਾ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਿਸ ਮਨ ਬਸੈ ਸੋਹ ਤੇ ਨਿਹਾਲ, ਤਾਕੇ ਨਿਕਟ ਨ ਆਵਤ ਕਾਲ, ਅਮਰ ਪੈ ਅਮਰਾ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਹਰ ਤਿਹਾਇਆ, ਸਲੋਕ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰਦੀਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਬਿਨਾਸੋ, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸੰਤ ਸੰਗ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਭ ਡੀਠਾ, ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਕਾ ਲਾਗਾ ਮੀਠਾ, ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਏਕ ਸਕਟ ਮਾਹੇ, ਅਨਕ ਰੰਗ ਨਾਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਏ, ਨੌ ਨਿਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ, ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਇਸਕਾ ਬਿਸਰਾਮ, ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਅਨਹਤ ਤਹਿਨਾਦ, ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਈ ਅਚਰਜ ਬਿਸਮਾਦ, ਤਿਨ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਆਪ ਦੇਖਾਏ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਸੋਜੀ ਪਾਏ, ਸੋ ਅੰਤਰ ਸੋ ਬਾਹਰ ਅਨੰਤ, ਘਟ ਘਟ ਪਿਆ ਪ੍ਰਹਿਆ ਭਗਵੰਤ, ਤਰਨ ਮਾਹੇ ਆਕਾਸ਼ ਪਿਆਲ, ਸਰਬ ਲੋਕ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਬੰਨ ਤਿਨ ਪਰਬਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਜੈਸੀ ਆਗਿਆ ਤੈਸਾ ਕਰਮ, ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ ਮਾਹੇ, ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਦੈ ਦੇਸੇ ਸਮਾਏ, ਤਿਸ ਤੇ ਪਿੰਨ ਨਹੀਂ ਕੋਠਾਓ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਪਾਓ, ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਮੈਂ ਦੇਖ, ਸਸੀਅਰ ਸੂਰ ਨਖੱਤਰ ਮੈਂ ਏਕ, ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਭ ਕੋ ਬੋਲੈ, ਆਪ ਅਡੋਲ ਨਾ ਕਬ ਹੁਣ ਡੋਲੈ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਰ ਖੇਲੈ ਖੇਲ, ਮੋਲ ਨਾ ਪਾਈਐ ਗੁਣੈ ਅਮੋਲ, ਸਰਬ ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਕੀ ਜੋਤ, ਧਾਰ ਰਹਿਓ ਸਵਾਮੀ ਓਤ ਪੋਤ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਭਰਮ ਕਾ ਨਾਸ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਮੈਂ ਇਹੋ ਵਿਸਾਸ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਪੇਖਣ ਸਭ ਬ੍ਰਹਮ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੈ ਹਿਰਦੇ ਸਭ ਧਰਮ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਸੁਣੈ ਸੁਭ ਬਚਨ, ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਰਾਮ ਸੰਗ ਰਚਨ, ਜਿਨ ਜਾਤਾ ਤਿਸ ਕੀਏ ਰਹਿਤ, ਸਤ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਸਭ ਕਹਿਤ, ਜੋ ਜੋ ਹੋਏ ਸੋਈ ਸੁਖ ਮਾਨੈ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਨੈ, ਅੰਤਰ ਬਸੇ ਬਾਹਰ ਪੀ ਓਹੀ, ਨਾਨਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਭ ਮੋਹੀ, ਆਪ ਸਤ ਕੀਆ ਸਭ ਸਤ, ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਸਗਲੀ ਉਤਪਤ, ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਕਰੇ ਬਿਸਥਾਰ, ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਏਕੰਕਾਰ, ਅਨਿਕ ਕਲਾ ਲਖੀ ਨਹਿ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਲਏ ਮਿਲਾਏ, ਕਵਨ ਨਿਕਟ ਕਵਨ ਕਹੀਐ ਦੂਰ, ਆਪੇ ਆਪ ਆਪ ਭਰਪੂਰ, ਅੰਤਰਗਤ ਜਿਸ ਆਪ ਜਨਾਏ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਆਪ ਬੁਝਾਏ, ਸਰਬ ਭੂਤ ਆਪ ਵਰਤਾਰਾ, ਸਰਬ ਨੈਣ ਆਪ ਪੇਖਣ ਹਾਰਾ, ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਜਾਕਾ ਤਨਾ, ਆਪਨ ਜਸ ਆਪ ਹੀ ਸੁਣਾ, ਆਵਨ ਜਾਨਕ ਖੇਲ ਬਨਾਇਆ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਨੀ ਮਾਇਆ, ਸਭ ਕੈ ਮੱਧ ਅਲਿਪ ਤੋਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਸੋ ਆਪੇ ਕਾ ਹੈ, ਆਗਿਆ ਆਵੈ ਆਗਿਆ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਜਾ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਲਏ ਸਮਾਏ, ਇਸ ਤੇ ਹੋਏ ਸੁਨਾਹੀ ਬੁਰਾ, ਓਰੈ ਕਹੋ ਕਿਨੈ ਕਾ ਸ਼ੁਕਰਾ, ਆਪ ਭਲਾ ਕਰਤੂਤ ਆਤ ਨੀ ਕੀ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪਣੇ ਜੀ ਕੀ, ਆਪ ਸਾਚ ਧਾਰੀ ਸਭ ਸਾਚ, ਓਤ ਪੋਤ ਆਪਨ ਸੰਗ ਰਾਚ, ਤਾਕੀ ਕਤ ਮਿਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਦੂਸਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੋ ਜੀ ਪਾਏ, ਤਿਸ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਜਾਨ, ਜੋ ਜਾਣੈ ਤਿਸ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਆਪ ਮਿਲਾਏ ਲਏ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ, ਉਹ ਧਨਵੰਤ ਕੁਲਵੰਤ ਪਤਵੰਤ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਭਗਵੰਤ, ਧਨ ਧਨ ਧਨ ਜਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ, ਜਨ ਆਵਨ ਕਾ ਇਹ ਸੁਆਉ, ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਚਿਤ ਆਵੈ ਨਾਉ, ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕਉ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਸਲੋਕ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਿਆ, ਪੂਰਾ ਜਾਕਾ ਨਾਉ, ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ, ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸੁਣ ਉਪਦੇਸ਼, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਕਟ ਕਰ ਪੇਖ, ਸਾਸ ਸਾ ਸਿਮਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੈ ਚਿੰਦ, ਆਸ ਅਨਿਤ ਤਿਆਗ ਹੋ ਤਰੰਗ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਧੂਰ ਮਨ ਮੰਗ, ਆਪ ਛੋੜ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਤਰਹੋ, ਹਰ ਧਨ ਕੇ ਪਰ ਲਿਹੋ ਭੰਡਾਰ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਪੂਰੇ ਨਮਸਕਾਰ, ਖੇਮ ਕੁਸ਼ਲ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਭਾਜ ਪਰਮਾਨੰਦ, ਨਰਕਿਨ ਵਾਰ ਉਧਾਰੋ ਜੀਓ, ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀਓ,
चेत चेत वहो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख भंजन पूरण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार उत्तम सलोक साध के बचन अमलीक लाल एह रतन सुनत कमावत होत उदार आप त्रै लोकैने सुतार सफल जीवन सफलता का संग जाकै मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाहद वाजै सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजै प्रगटे गोपाल महा तो कै माथे नानक उधरे तिन कै साथे सरन जोग सोन सरणी आए कर कृपा प्रभ आप मिलाए मिट गए बैर पए सब रेन अमृत नाम साध संग लैन सो प्रसन्न पए गुरुदेव पूरन होए सेवक की सेव आल जंजाल बिकारते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभ तारी नानक निभही खेप हमारी प्रभ की उस्तत करहो संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुखमनी सहज गोबिंद गुण नाम जिस मन बसै सो होते निधान सर्व इच्छा ताकी पूरन होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब ते ऊच पाए अस्थान बहुर न होवे आवन जान हर धन खाट चलाए जन सोए नानक जिस है प्राप्त होए खेम शांत रिद नव निद बुद्ध ज्ञान सर्वत है सिद्ध विद्या तप जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम इशनान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कह मद सगल ते उदास सुंदर चतुर तत का बेता सम दर्शी एक दृष्टिता ए फल तिस जन कै मुख पहने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एहो निदान जपै मन कोय सब जुग में ताकी गत होए गुण गोबिंद नाम धुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोबिंद भगत कै मन विश्राम कोट अपराध साध संग मिटाए संत कृपा ते जमते छुटाए जाकै मस्तक कर्म प्रभ पाए साध सरण नानक ते आए जिस मन बसै सुन लाए प्रीत तिस जन आवै हर प्रभ चीत जन्म मरण ताका दुख निवारै दुलभ देह तत्काल उधारै निर्मल शोभा अमृत ताकी बानी एक नाम मन माहे समानी दुख रोग बिन से पै परम साध नाम निर्मलता के कर्म सब ते ऊचता की शोभा बनी नानक एह गुण नाम सुख मनी सब ते ऊच ताकी शोभा बनी नानक एह गुण नाम सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

दूर। कथना कथी न आवै टूट, कथ कथ कथी कोटि कोट कोट, दे दा दे लै दे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाही खाही, हुक्मी हुक्म चलाए राहु, नानक विकसै वे प्रवाहु। साचा साहिब साच नाए, भाख्या पाउ अपार, आखै मंगह देह देह, दात करे दातार, फेर के अगै रखियै जित दिसै दरबारु, मुहाओ के बोलन बोलिए, जित सुन तरे प्यार, अमृत वेला सच नाउ वडियाई विचार। करमी आवै कपड़ा नदरी मुख द्वार, नानके वै जानिया सब आपे सचियार, थापिया ना जाए कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए, जिन सेविया तिन पाया मान, नानक गाविए गुणी निदान, गाविए सुनिए मन रखिए भाउ, दुख पर हर सुख घर लै जाए, गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रिहा समाई, गोरीसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई, जे हाओ जाना आखा नाही कहना कथन न जाई, गुरा एक दे बजाई, सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई, तीर्थ नावा जे तिस पावा, विण पाने के नाए करी, जेती सिर टो पाई वेखा, विण कर्मा के मिले लई, मत विच रतन जवाहर माणिक, जे एक गुर की सिख सुनी, गुरा एक दे बुझाई, सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई, जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खंडा विच जानिए नाल चले सब कोई, चंगा नाउ रखाए कै जस कीरत जगले, जे तिस नदर न आवई तवात न पुछे के, कीटा अंदर कीट कर दोसी दोस धरे, नानक निर्गुण गुण करे गुणवंते आ गुण दे ते हा, कोई न सुजई जे तिस गुण कोई करे, सुने सिद्ध पीर सुरनाथ सुने धरत धवल आकाश, सुने दीप लो पाताल सुने पोहे न सकै काल, नानक भगता सदा विगास, सुने दुख पाप का नाश, सुने सर ब्रह्मा इंद सुने मुख साल हनुमंद,

दुख पाप का नाश, सुने सरा गुण की गाह, सुने सिख पीर पात साह, सुने अंधे पावह राहु, सुने हाथ हुए सुगाहु, नानक भगता सुदा विगाह, सुने दुख पाप का नाश, मन्ने की गत कही न जाए, जी को कह पिछे पछताए, कागद कलम न लिखन हार, मन्ने का बैकर्ण विचार, ऐसा नाम निरंजन होए, जी को मन जाने मन कोए, मन्ने सुरत हुए मन बुद्ध, मन्ने सगल पवन की शुद्ध, मन्ने मुँह चोटा न खाए, मन्ने जम के साथ न जाए, ऐसा नाम निरंजन होए, जी को मन जाने मन कोए, मन्ने मार्ग ठाक न पाए, मन्ने पथ्यों प्रगट जाए, मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म से तीसन बंधु, ऐसा नाम निरंजन होए, जी को मन जाने मन कोए, मन्ने पावह मुख द्वारु, मन्ने परवार साधारु, मन्ने तरह तारी गुरु सिख, मन्ने नानक पवह न पिख, ऐसा नाम निरंजन हुए, जी को मन जाने मन कोए, पंच प्रवान पंच प्रधान, पंचे पावह दर गहमान, पंचे सोह दर राजान, पंचा का गुर एक ध्यान, जे को कह कर विचार, करते कह करने नहीं सुमार, तौल धर्म दया का पूत, संतोख थापर किया जिन सूत, जे को बुझे हुए सचियार, तवले ऊपर किता पार, धरती होर परे होर होर, तिस्ते पार तले कवन जोर, जी जात रंगा के नाव, सबना लिखिया बड़ी कलाम, इहो लिखा लिख जाने कोई, लिखा लिखिया किता हुए, किता तान सुवाले हो रूप, किती दात जाने कौन कूत, किता

कार जो तुद भावे साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार भरिए हाथ पैर तन देहे पानी धोते उतर सुखे मूत पलीती कपड़ होए दे साबून।

जुग जुग एकोवीस आसन लोए लोए भंडार जो किच पाया सो एका वार कर कर वेखे सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश से आदेश आद नीलानाद अनाहत जुग जुग एकोवीस एक दू जी भाव लख होए लख हो वह लख वीस लख लख गेड़ा आखी है।

न जुगती छुट्टे संसार। जिस हथ जोर कर वेखै सोए, नानक उत्तम नीच न कोए। राती रुती थिती वार, पवन पानी अग्नि पाताल। तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल। तिस विच जी जुगत के रंग, तिन के नाम अनेक अनंत। करमी करमी हुए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। तिथै सोहन पंच परवार, नदरी करम पवै निसान। कच पकाई उथै पाए, नानक गया जा पै जाए। धर्म खंड का इहु धर्म, ज्ञान खंड का आखहु कर्म। केते पवन पाणी वै संतर, केते कान महेश। केते बरमे घाड़त घड़ी है, रूप रंग के वेश। केतिया कर्म भूमि, मेर केते केते धूप देश। केते इंद चंद सूर, केते केते मंडल देश। केते सिद्ध बुद्ध नाथ, केते केते देवी वेश। केते देव दान मुन, केते केते रत्न समुंद। केतिया खानी, केतिया बाणी, केते पात नरिंद। केतिया सुरती सेव, केते नानक अंत नांत। ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड, तिथै नाद विनोद कोड आनंद। शर्म खंड की बाणी रूप, तिथै घाड़त घड़िए बहुत अनूप। ताकिया गल्ला कथिया ना जाए, जे को कहे पिछे पछताए। तिथै घड़िए सुरत मत मन बुद्ध, तिथै घड़िए सुरा सिद्धा की सुध। कर्म खंड की बाणी जोर, तिथै और न कोई होर। तिथै जूत महाबल सूर, तिन महराम रहा भरपूर। तिथै सीतो सीता महिमा माहे, ताके रूप न कथने जाहे। ना उहि मरह न ठागे जाहे, जिनके राम वसै मन माहे। तिथै भगत वसै के लोक, रहे आनंद सच्चा मन सोए। सच खंड वसै निरंकार, कर कर वेखै नदर निहाल। तिथै खंड मंडल वर भंड, जी को कथै तंत नंत। तिथै लो लो आकार, जिव जी हुकम तिवै तिवकार। विखै विकसै कर विचार, नानक कथना करड़ा सार। जत बहारा धीर सुनियार, अहरन मत वेद हथियार। पाओ खलागन तपताओ, भांडा पाओ अमृत तटाल। घड़िए शब्द सच्ची टकसाल, जिन कौ नदर करम तिनकार। नानक नदरी नदर निहाल। श्लोक पवन गुरु पाणी पिता, माता तरत महत। दिवस रात दोए दाई दाया, खेलै सगल जगत। चंगे आईया बुरे आईया, वाचै धर्म हदूर। करमी आपो अपनी, के नेड़ै के दूर। जिनी नाम ते आया, गए मसक्कत काल। नानक ते मुख उजले, केती छुट्टी नाल।

नमस्तं सुविकाय नमस्तं अनिकाय नमस्तं अभूते नमस्तं अजूपे नमस्तं निर्कर्मे नमस्तं निर्परमे नमस्तं निर्देशे नमस्तं निर्पेशे नमस्तं निर्नामे नमस्तं निर्कामे नमस्तं निर्दाते नमस्तं निर्गाते नमस्तं निर्धूते नमस्तं अभूते नमस्तं अलोके नमस्तं अशोके नमस्तं निर्तापे नमस्तं अथापे नमस्तं त्रिमाने नमस्तं निदाने नमस्तं अगाहि नमस्तं अबाहि नमस्तं त्रिवर्गे नमस्तं असर्गे नमस्तं प्रभोगे नमस्तं सुजोगे नमस्तं अरंगे नमस्तं अपंगे नमस्तं अगम्ये नमस्तस्तरम्ये नमस्तं जलाश्रये नमस्तं निराश्रये नमस्तं अजाते नमस्तं अपाते नमस्तं अमजवे नमस्तस्त अजवे अदेशं अदेशे नमस्तं अपेशे नमस्तं निर्तामे नमस्तं निर्वामे नमो सर्वकाले नमो सर्वदयाले नमो सर्वरूपे नमो सर्वभूपे नमो सर्वखापे नमो सर्वथापे नमो सर्वकाले नमो सर्वपाले नमस्तस्त देवे नमस्तं अपेवे नमस्तं अजन्मे नमस्तं सुवन्मे नमो सर्वगौणे नमो सर्वपौणे नमो सर्वरंगे नमो सर्वपंगे नमो काल काले नमस्तस्दयाले नमस्तं अवर्णे नमस्तं अमरणे नमस्तं जरारं नमस्तं कृतारं नमो सर्वतन्दे नमो सतवन्दे नमस्तं नरसाके नमस्तं निर्वाके नमस्तं रहीमे नमस्तं करीमे नमस्तं अनन्ते नमस्तं महन्ते नमस्तस्तरागे नमस्तं सुहागे नमो सर्वसुखं नमो सर्वपोखं नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहर्ता नमो जोगजोगे नमो भोगभोगे नमो सर्वद्याले नमो सर्वपाले चाचरि छन्त्वप्रसाद अरूप है अनूप है अजू है अपू है अलेख है अपेक है अनाम है अकाम है अदेह है अपेय है अजीत है अपीत है त्रिमान है निदान है त्रिवर्ग है असर्ग है अनिल है अनाद है अजेय है अजाद है अजन्म है अवर्ण है अपूत है अपर्ण है अगांज है अपांज है अचूज है अचांज है अमीक है रफीक है अतंध है अबंध है निर्भूज है असूज है अकाल है अजाल है अलाह है अजाह है अनंत है महंत है अलीक है निरसीक है निर्लंब है असंभ है अगम है अजम है अपूत है अछूत है अलोक है अशोक है अकर्म है अपर्म है अजीत है अपीत है अबाह है अगाह है अमान है निदान है अनेक है फिरेक है पुजंग प्रयाचंद नमो सर्वमाने समस्ते निदाने नमो देव देवे अपेखी अपेवे नमो काल काले नमो सर्वपाले नमो सर्वगौणे नमो सर्वपौणे अनंगी अनाथे नरसंगी परमाथे नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत्य नृत्ये नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे परपंगी परमाते समस्ति बेपूते कलंकं बिनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजे स्रं परम रूपे नमो जोग जोगे स्रं परम सिद्धे नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे नमो शस्त्रपाणे नमो अस्त्रमाणे नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता अपेक्षी अपरमे अपोगी अपुगते नमो जोग जोगेश्वरं परम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेता प्रेत देवेषु धर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साह साहं नमो पूप पूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तं इस्नानं नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्रं नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सच्चिदानं सर्वं प्रणासी अनूपे अरूपे समस्तुल निवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा बृदकर्ता अधो उर्ध अर्धं अगं ओग हर्ता परम परम परमेश्वरं प्रोचपालं
सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालुंग अछेदी अभेदी अनामंग अकामंग समस्तो पराजी समस्त

राजू हैं, आदेश हैं, आपेश हैं, भुजंग प्रयाच चंद अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूपे नमो सर्वमान्य समस्ति निदाने नमस्तुंग निरनाथे नमस्तुंग परमाते नमस्तुंग अगंजे नमस्तुंग अपंजे नमस्तुंग काले नमस्तुंग पाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो

सर्व जंत्रं नमो सर्व दृश्यं नमो सर्व कृष्णं नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिज्ये अपिज्ये समस्तं प्रसिज्ये कृपालं स्वरूपे कुकर्मं परनासी सदा सर्वदा हृदय सिद्धं निवासी चरपड़ चंत्व प्रसाद अमृत कर्मे अमृत तर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजी अटल साजी अखल धर्मंग लख कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पानी सर्वंग मानी सर्वंग प्राण सर्वंग त्राण सर्वंग भुगता सर्वंग जुगता सर्वंग देवंग सर्वंग पेवंग सर्वंग काले सर्वंग पाले रूआल चंत्व प्रसाद आदि रूप अनाद मूर्त जौन पुरख अपार सर्व मान त्रिमान देवा पेवाद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व कोपन काल जत्र तत्र विराज ही अवतूत रूप रिसाद नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग न रेख आद पुरुष उदार मूर्त जौन आद शेख देश और न पेश जाकर रूप रेख न राग जत्र तत्र दिशा विशा हुए फैलु अनुराग नाम काम विहीन पेखत ताम हूँ नह जाहि सर्व मान सर्वत्र मान सदै मान तथा एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेल अनंत को फिर एक देव पेव न जानही जे वेद और कतेव रूप रंग न जात पात सो जानी के जेव तात मात न जात जाकर जन्म मरण बहीन चक्र वक्र फिर चतर चक मानी पुर तीन लोक चौदह के बिखै जग जापी जे जाप आदिवन आद मूर्त थाप्यो सबै जे थाप परम रूप नीत मूर्त पूर्ण पुरखा पार सर्व विश्व रचियो सोयं पव गणन पंजन हार कालहीन कला संयुक्त काल पुरख देश धर्म धाम सो परम रहत भूत लख भेष अंगराग न रंग जाग कह जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुख दाय काम आप रूपा

देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनपूत अंग आभा अपांग गतमित अपार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निरपय निकाम अतदुत प्रचंड मित गत अखंड आलस्य कर्म अदृश्य धर्म सर्वा परनाट्य अंडंड बाट्य चाचरी चंत्व प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं निरनामे अकामे पुजंग प्रयाचंद चतर चक्र कर्ता चतर चक्र हर्ता चतर चक्र दानी चतर चक्र जानी चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मान्य चतर चक्र दान्य चाचरी छंद न सत्रह न मित्र न परम न पित्र न कर्म न काय अजन्म अजाय न चित्र न मित्र परे है पवित्र प्रथिशय अधिशय दृश्य कृश्य भगवती चंद्व प्रसाद कथते किया चिज देशय किया भिज पेशय किया गंज कर्मय किया भंज भरमय किया भिज लोकय किया दित सुकय के अवतूत वरणय के विभूत करणय कि राजंग प्रभा है कि धर्मंग तुझा है कि आसुक वरणय कि सर्वा अपरणय कि जगतंग कृति है कि छत्रंग छत्री है कि बर्मंग स्वरूप है कि अनुभव अनूप है कि आद अदेव है कि आप अपीव है कि चित्रंग बहीन है कि कह अधीन है कि रोजी रजा कह रही मैं रेहा कह कि पाक वे अवय कि जैबुल गैव है कि अफूल गुनाह है कि साहन साह है कि कारण कुनिंद है कि रोजी देहांद है कि राजक रहीम है कि कर्मंग करीम है कि सर्वंग कली है कि सर्वंग दली है कि सर्वत्र मान्य है कि सर्वत्र दान्य है कि सर्वत्र गौण है कि सर्वत्र पौण है कि सर्वत्र दिश है कि सर्वत्र पेश है कि सर्वत्र राज्य है कि सर्वत्र साज्य है कि सर्वत्र दीन है कि सर्वत्र लीन है कि सर्वत्र जाहु कि सर्वत्र पाहु कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र पेश है कि सर्वत्र काल है कि सर्वत्र पाल है कि सर्वत्र हंता कि सर्वत्र गंता कि सर्वत्र पेखी कि सर्वत्र पेखी कि सर्वत्र काज्य है कि सर्वत्र राज्य है कि सर्वत्र सुख है कि सर्वत्र भूख है कि सर्वत्र त्राण है कि सर्वत्र प्राण है कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र पेश है कि सर्वत्र मान्य सदैव प्रधान्य कि सर्वत्र जाप्य कि सर्वत्र थाप्य कि सर्वत्र पान है कि सर्वत्र मान्य कि सर्वत्र इंद्र है कि सर्वत्र चंद्र है कि सर्वं कलिमय के परमंग फहीमय कि आकुल अलामय कि साहिब कलामय कि हुस्नल वजू है तमामुल रुजू है हमीसल सलामय सलीकत मुदामय गनीमुल शिकस्त है गरीबुल परस्त है बिलंदुल मकान है जमीनुल जमान है तमीजुल तमाम रुजुअल निदान है हरीफुल अजीम रजा की यकीन है अनिकल तरंग है अपेद है अपंग है अजीजुल निवाज है गनी मुल्क राज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुक्त प्रभा है सुजुक्त सुधा है सदैवं स्वरूप है अपेदी अनूप है समस्तो पराज है सदा सर्वसाज है समस्तुल सलाम है सदैव लकाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है अंगाद रूप है अनाद स्वरूप है अनंगी अनामी त्रिपंगी त्रिकामे त्रिवर्गंग त्रिबादे अगंजे अगाधे सुभंग सर्वभागे सुसर्वा अनुरागे त्रिपुगत स्वरूप है अचिज है अछूत है कि नरकंग प्रणास है पृथ्वल प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैवं सदा है विभुक्त स्वरूप है प्रजुक्त अनूप है निरुक्त सदा है विभुक्त प्रभा है अनुक्त स्वरूप है प्रजुक्त अनूप है चाचरी छंद अपंग है अनंग है अपेख है अलेख है अपर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अपूत है अतूत है अनास है उदास है अतंद है अबंध है अभक्त है विरक्त है अनास है प्रकाश है निचिंत है सुनित है अलिख है अधिक है अलिख है अपीक है अटा है अगा है असंभ है अगम्भ है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजाद है चरपट छंत्व प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग गंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग हर्ता सर्वंग कर्ता सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं सर्वंग कर्मं सर्वंग धर्मं

सर्वंग युगता सर्वंग मुक्ता रसावल चंत्व प्रसाद नमो नरक नासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विपुते परमात्म परमाते सदा सर्वसाते अगाध स्वरूपे निर्बाध विपुते अनंगी अनामी त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न मात न जात न पात निर्साकं शरीक है अमितो अमीक है सदैव प्रभा है अजय है अजा है भगवती चंत्व प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजिर हजूर है समस्तुल सलाम है समस्तुल हमीसुल सलाम है समस्तुल कलाम है कि जाहर जहूर है कि हाजिर हजूर है हमीसुल सलाम है समस्तुल कलाम है कि साहिब दिमाग है कि हुस्नुल चिराग है कि कामल करीम है कि राजक रहीम है कि रोजी दिहांद है कि राजक रहिंद है करीमुल कमाल है कि हुस्नुल जमाल है गनीमुल खिराज है गरीबुल निवाज है हरीफुल सिकन है हिरासुल फिकन है कलंक प्रनास है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रजायक रहीम है समस्तुल जुबा है के साहिब किरा है के नरकंग प्रनास है वह सुल निवास है के सर्वल गवन है हमीसुल रुवन है तमामुल तुमीज है समस्तुल अजीज है परंग परमीश है समस्तुल अधीश है आदेशुल अलीख है हमीसुल अपीख है जमीनुल जुमा है अमीकुल इमा है करीमुल कमाल है के जुरत जमाल है के असलंग प्रकाश है के मितो सुभाष है के अजब स्वरूप है के मितो विभूत है के अमितो पसा है के आत्म प्रभा है के अचलंग अनंग है के मितो अपंग है मत पार चंत्व प्रसाद मुन मन प्रणाम गुनगन मुदाम हर पर अगंज हर नर पर पांजु अनगन प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड वन पवनास मुन मन प्रकाश गुनगन प्रणाम जल थल मुदाम अंचिज अंग आसन अपांग उपमा पार गत मित उदार जल थल अमंड दिस्विश अपांड जल थल महंत दिस्विश बेअंत अनपवनास त्रितर तुरास आजान बाहु एक सदाहु ओंकारात कथनी अनाद खलखंड ख्याल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अनछिज गात अजिज न बात अनचंज गात अनरंज बात अनटुट भंडार अनडट अपार आडीट धर्म अतटीट कर्म अनब्रन अनंत दाता महंत हर बोल मना चंतु प्रसाद करुणालय है हर काल्य है खलखंडन है महमंडन है जगतीश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्ववारण है त्रित के तरण है जग के करण है मनमान्य है जग जान्य है सर्वं पर है सर्वं कर है सर्वपाश्य है सर्वनाश्य है करुणा कर है विश्वम पर है सर्वेश्वर है जगतीश्वर है ब्रह्मंडस है खलखंडस है परते पर है करुणा कर है अजपा जप है अथपा थप है अकृता कृत है अमृता अमृत है अमृता अमृत है करुणा कृत है अकृता कृत है धरणी त्रित है मिथेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत है अमृता अमृत है अजबा कृत है अमृता अमृत है निर्नायक है कलकायक है विश्वम पर है कुरुणालय है नृपनायक है सर्पायक है पावपंजन है अर्गंजन है रिपतापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वा कृत है कर्ता कर है हरता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस के जस है पुजंग प्रयाचंद नमो सूर्य सूर्ये नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो रासं तामसं शांत रूपे नमो परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पूज पूजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंग विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे कचरी छंद अजय अलय अभय अभय अपू अजू अनास अकाश अगंज अपंज अलख अपक अकाल दयाल रेख अपेख अनाम अकाम अगाह अटा अनाथ प्रमाते अजूनी अमुनि न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग परमंग गंजी अलेखे पुजंग प्रयाचंद
नमस्तुल प्रणामी समस्तुल प्रणासी अगंजुल अनामी समस्तुल निवासी निरकामं बेपूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सुधर्मं बेपूते सदा सचदानंद सत्रंग प्रणासी करिमुल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजाय विपूते गजायब गनिमे हरियं करियं करिमुल रहीमे चत्र चक्र वर्ती चत्र चक्र पुगते स्वयं पाव सुबंग सर्वदा।

उचारत बिदा जाको भीव न पावत बिदा ताको कृपान अनुमानत महामूड कछ भेद न जानत महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चीनत न भेव आप अपनी बुद्ध है जेती बरनत भिन्न भिन्न तुहे तेती तुमरा लखा न जाए पसारा के विद सजा प्रथम संसारा एक कै रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कहे भूपा अंडज जेरज से तेज कीनी उत्पुज खान बहुर रच दीनी कहूं फूल राजा हवे बैठा कहूं सिमट भयो शंकर कैठा शिगरी सृष्ट दिखाए अचम भव आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख वार सिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रणकाता जे आस तुज तव सरनी परे तिनके दुष्ट दुख तहवै मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार ते हैं ताके काल निकट नह हैं रक्षा हुए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काला कृपा दृष्टन जाहे निहरिहु ताके ताव तनक मैं हरिहु रिद्ध सिद्ध करमु सब होई दुष्ट छाह छव सकै न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहे उबारा

लिहु वारी सर्व ठावर मोहु सहाय दुष्ट दोख ते लिहु बचाई। कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता किल विक सकल देह को हरता। दुष्ट दोखियन को छय करता श्री अस तुज जप भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला। मन बांचत फल पावे सोई दुख नत सह व्यापत कोई अड़िल। सुने गुंग जो याहि सुरस न पावई सुने मूड चित लाए चतुरता आवई। दुख दर्द पाव निकड़ना तिन्नर के रह हो जो या की एक बार चाव पाई को कह। चौपाई संबत सत्रह सहसपनी जय अर्ध सहस फुन तीन कही जय। भाद्रव सुदी अष्टमी रवारा तीर्थ तद्रव ग्रंथ सुधारा। सुवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंक तरे नहीं आन्य। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहे हम एक न जान्यो। श्री अस्पान कृपा तुमरी कर मैं न कहूँ सब तो ए बकान्यो। दो हरा सगल

तेरा सब किच है, जिस देहे सो पावई, सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन वसावई, नाम जिनकै मन वसियावा, जी शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब, क्या नाही घर तेरै, साचा नाम मेरा आधारु, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया, कर सांत सुख मन आए वसिया, जिन इच्छा सब पुजाइया, सदा

सच समाणी जन्म रतन जिन कटिया भले सेवन जारे कह नानक जिन मन निर्मल सदा रह है गुरु नाले जी को सिख गुरु सेती सन्मुख होवै होवै ता सन्मुख सिख कोई जी हो रह गुरु नाले गुर के चरण हृदय ते आय अंतरात्मा समाले आप छठ सदा रह परनै गुर बिन अवर न जाने कोई कह नानक सुनो संत हो सो सिख सन्मुख होए जे को गुर ते वे मुख होवे बिन सत गुर मुक्त न पावे पावे मुक्त न होर ते कोई पुछो विवेकिया जाए अनेक जूनी भरम आवे बिन सत गुर मुक्त न पाए फिर मुक्त पाए लाग चरणी सत गुरु शब्द सुनाए कह नानक विचार देखो बिन सत गुर मुक्त न पाए आव हो सिख सत गुरु के प्यारे हो गावो सच्ची बाणी बाणी ता गावो गुरु केरी बाणिया सिर बाणी जिनको नजर कर्म हुवे हिरदय तिना सुमानी पीवो अमृत सदा रहो हर रंग जप्यो सारंग पाणी कह नानक सदा गावो एह सच्ची बाणी सत गुरु बिना होर कच्ची है बाणी बाणी ता कच्ची सत गुरु बाजो होर कच्ची बाणी कहते कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आख वखाणी हर हर नित करह रसना कहया कछु न जानी चित जिन का हिर लिया माया बोलन पैरवाणी कह नान सत गुरु बाजो होर कच्ची बाणी गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ शब्द रतन जित मन लागा एहो हुआ समाओ शब्द सेती मन मिलिया सच्चा लाया भाऊ आपे हीरा रतन आपे जिसनु दे बुझाए कह नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ शिव सकता पुपाए कह करता आपे हुक्मरताए हुक्मरताया विकै गुरमुख सह बुझाए तोड़े बंधन हुवै मुख शब्द मन वसाए गुरमुख जिसनो आप करे सो हुवै इक स्यो लिवलाए कह नानक आप करता आपे हुक्म बुझाए सिमरत शास्त्र पुन पा विचार दे तत्तै सार न जानी तत्तै सार न जानी गुरु बाजहु तत्तै सार न जानी ते गुणी संसार भ्रम सुत्ता सुत्या रहन विहानी गुर कृपा ते से जन जागे जिना हरमन वसिया बोलह अमृत बाणी कह नानक सो तत् पाए जिसनु अन दिन हर लिव लागे जागत रहन विहानी माता के उदर में प्रतपाल करे सो क्यों मनु विसारी है मनो क्यों विसारी है विडदाता जगन में आहार पहुंचावे उसनु क्यों पहे न सकी जिसनु अपनी लिव लावे अपनी लिवा पेलाए गुरमुख सुदा संभाली है कह नानक विडदाता सो क्यों मनो विसारी है जैसी अगन उदर में तैसी बाहर माया माया गुण सविको जे ही करता खेल रचाया जा तिस भाणा ता जमिया परवार भला पाया लिव छुटकी लगी तृष्णा माया मुरवरताया हे माया जितर विसरै मुपजै भाऊ दूजा लाया कहनान गुर प्रसादी जिना लिव लागी तिन विचे माया पाया हरे आप अमुल कह मुल न पाया जाए मुल न पाया जाए किसै विटहु रहे लोक विल लाए ऐसा सतगुरु जे मिले तिसनों सिर सौपिया विचो आप जाए जिसदा जीव तिस मिल रह हर वसै मन आए हर आप मुल कह भाग तिना के नानका जिन हर पल लै पाए रास मेरी मन बन जारा हर रास मेरी मन बन जारा सतगुरु ते रास जानी हर हर नित जपे हो जी हो लाह खटे हो दिहाड़ी एहो धन तिना मिलया जिन हर आपे भाणा कह नानक रास मेरी मन हुआ बन जारा हे रसना तू अनरस राच रही तेरी प्यास न जाए कि होरत कितै जिचर हर रस पलै न पाए हर रस पाए पलै पिए हर रस बोड़ न तृष्णा लागे आए एहो अरस करमी पाईए सतगुर मिलै जिस आए कह नानक होर अनरस अविसरे जा हर वसै मन आए शरीरा मेरे आ हर तुम मह जोत रखी ता तू जग में आया हर जोत रखी तुद विष्टा तू जग में आया हर आपे माता आपे पिता जिन जी उपाय जग दिखाया गुर प्रसादी बुझिया ता चलत हुआ चलत नदरी आया कह नानक सृष्टि का मूल रचिया जोत रखी ता तू जग में आया मनचाओ भया प्रभागम सुनिया हर मंगल गाओ सखी गृह मंदिर बनया हर गाओ मंगल नि सखिये सोग दुख ना व्यापे गुर चरण लागे दिन सुभागे अपना फिर जापे अनहत बाणी गुर शब्द जानी हर नाम हर रस भोगो कह नानक प्रभा मिलया करण कारण जोगो ए श्री राम मेरे ऐस जग में आए कह क्या तुद कर्म कमाया के कर्म कमाया तुद श्री राजा तू जग में आया जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन न वसाया गुर प्रसादी हर मन वसिया पूर्व लिखिया गुर प्रसादी हर मन वसिया पूर्व लिखिया पाया
कह नानक क्यों शरीर परवान हुआ, जिन सतगुरु स्यों चित लाया, ए नित्र हो मेरे हो हर तुम मह जो तरी, हर बिनवर न देखो हो कोई, हर बिनवर न देखो हो कोई, नदरी हर निहालिया, एहो वे संसार तुम देख दे, एहो हर का रूप है, हर रूप नदरी आया, गुर प्रसादी बुझिया, जा वेखा हर एक है, हर बिनवर न कोई, कह नानके नित्र अंत से सतगुर मिले दिव दृष्ट होई, हे श्रवण हो मेरे हो सच है सुनना नो पठाए, सच है सुनना नो पठाए, शरीर लाए सुन हो सतबाणी, जित सुनी मंतन हरिया हुआ, रसना रस मानी, सचल कुबडाणी ताकि गत कही न जाए, कह नानक अमृत नाम सुनहु पवित्र हो, सच है सुनना नु पठाए, हर जीव गुफा अंदर राखै वाजा पौन वजाया, वजाया वाजा पौन नौ द्वारे प्रगट किए, दसवां गुप्त रखाया गुरुद्वारा लाए भावनी, एक ना दसवां द्वार दिखाया, तह अनेक रूप नाउ नव निध, तिस्तांत न जाई पाया, कह नानक हर प्यारै, जियो गुफा अंदर रख कै वाजा पवन वजाया, एहो साचा सोहिला सचै कर गावो, गावो ता सोहिला कर साचै, जिथै सदा सच ध्यावहि, सचो ध्यावहि जात दुभावहि, गुरमुख जिना बुझावहि, सत सभना का कसमै जिस बख्शी सो जन पावहि, कह नानक।

संत साजन भय सरसे पूरे गुर ते जाने, सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया भर पूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया भर पूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तू ठाकुर तारी तुम ते हो।

दर्शन प्यासी दिन सरात चितवो अन दिन नीत खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संग मीत दरबा दे ठाडे दरबार तुझ बिन सुरत करै को मेरी दर्शन दीजै खोल किवाड़ तुझ बिन सुरत करै को मेरी दर्शन दीजै खोल किवाड़ सतनाम

सुख सागर गुर पाया, ता सहसा सगल मिटाया। हर के नाम की वडियाई, आठ पहर गुण गाई।

सत्संग जी, बोलो जी। वाहिगुरु वाहिगुरु, एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वास बोली पाचे दसवीं प्रथम भगवती समर कह गुरु नानक लेते आए, फिर अंकित गुरु ते अमरदास रामदास से हुए सहाय। अर्जुन हर गोबिंद सिमर श्री हर राय, श्री हर कृष्ण त्याग ते सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमर आकान उन दयावे ताए, सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज साहब साई हुए सहाय, दसा पाची के पितरात्मक स्वरूप साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब ने पास दर दर के गल सस बोलो जी। वाहे गुरु गरीब नवाज आप जी के पांच प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्त हड्डिया जापिया तपिया जिन्हें नाम जपिया वन छकिया दे चलाई ते वाहि दे कंडेट किया ना प्यार है त्यारियां की कमाई दते अंतर के बोलो जी। वाहे गुरु जिन्हां सिंघा सिंघणिया धर्म हिस्सी दिते बंद बंद कटवाए, खोपरियां लुआईया चरखड़िया चढ़े आर न चढ़ाए गए, गुरुद्वारे सेवा कुर्बानियां की धर्म ने आ रहा सत्संग निभाया तिना की कमाई का ध्यान रखे बोलो जी। वाहेगुरु पंजाब गुरुद्वारे का ध्यान रखे बोलो जी। वाहेगुरु प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु नाम चिता है, चित आवण का सदका सर्व सुख है। जहां जहां गुरु खालसा साहब तर चरियाज देख देख की फतेह, ब्रत की पैज पंथ की जी श्री साहब जी सहाय। खालसा जी के बोलबाले बोलो जी। वाहे गुरु सिखा नु सिखी दान, केस दान, रैत दान, विवेक दान, मसाह दान, भरोसा दान, दाना सिर दान, नाम दान, श्री अमृतसर साहब के दर्शन स्नान, चौंकियां झंडे मूंगे जुगो जुगा टन धर्म का जयकार बोलो जी। वाहे गुरु सिखांदा मन नीमा मत तुचे, मत पत के राखे आप वाहे गुरु। गुरु की प्रवाह पंथ सदा सहाय दया दियो, गुरुद्वारा ननकाना साहब पंजा साहब होर गुरुद्वारे गुरुधाम जिन्हें तो आप जी के पंथ में छोड़िया गया है, उन्होंने गुरु दर्शन के दार से सेवा संभाल दान अपने खालसा जी ने बख्शो। हे नोटिया दी ओट गुरु न्यास

सेवी सतगुर आपना हर सिमरी दिन सब रैन आप त्याग सरणी पवा मुख बोली मिठड़े वैन जन्म जन्म का विछुड़िया हर मेलो सज्जन सैन जो जी हर ते विछुड़े से सुख न वसन पैण।

ससुरै पेयै तिस कंत की वड्डा जिस परवार ऊंचा गम अगाध बोध किछ अंत न पारा वारू सेवा सा तिस भावसी संता की हुए छार दीना नाथ दयाल देव पतित उधार।

दिन रैन जिस न विसरे सो हरिया हुए जंत। सर्व कला प्रभ पूर्णो मंज निमाणी थाऊ, हर ओट गही मन अंदरे जप जप जीवानाव। कर कृपा प्रभ अपनी जन धूड़ी।

आख बखानी है, अंतर बह के कर्म कमावे, सो चहु कुंडी जानी है। जो धर्म कमावे तिस धर्म ना हुवे, पाप कमाणे पापी जानी है। तू आपे खेल

पौड़ी। तुदे आपे जगत उपाय कै, तुदे आपे धंधे लाया, मोह ठगौली पाए कै, तुदे आपहु जगत खुआया। तिस ना अंदर अग्न है, नह तिपतै

सो इन्हें कह पर्वत गुफा करी, कह पानी पयाल, कह विच धरती, कह आकाशी, उर्द रहा सिर भार, पुर कर काया कपड़ पहरा तू।

में सुख सुमावे पवड़ी। काया हंस संजोग मेल मिलाया तिन्ही किया विजोग जिन उपाया। मूरख भोगे भोग दुख सुबाया सुख उठे रोग पाप कमाया। हरख हो सोग विजोग उपाय खपाया मूरख गणत गणाय झगड़ा पाया। सतगुर हथ नबेड़ झगड़ चुकाया करता करे सुहोग न चले चलाया। श्लोक महला पहला। कूड़ बोल मुरदार खाए अवरे नो समझावन जाए मुठा आप मुहाए सत है। नानक ऐसा आगू जापै महला चौथा। जिस दे अंदर सच है सो सच्चा नाम मुख सच अलाए। ओहो हर मार्ग आप चलदा होर नानो हर मार्ग पाए। जे अगे तीर्थ होए ता मल लह छप्पड़ नहातै सगवी मल लाए। तीर्थ पूरा सतगुरु जो अन दिन हर हर नाम ते आए। ओ आप छुट्टा कुटंब स्यों दे हर हर नाम सब सृष्ट छिड़ाए। जन नानक तिस बलिहारन है जो आप जपै अवरा नाम जपाए। पौड़ी। एक कंद मूल चुन खाहे वन खंड वासा एक भगवा वेश कर फिर है जोगी सन्यासा। अंदर तृष्णा बहुत छादन भोजन की आसा बिरथा जन्म गवाए ना गिरही ना उदासा जमका।

चौथा पर हर काम क्रोध झूठ निंदा तज माया अहंकार चुकावे तज काम कामनी मोह तजै

पौड़ी राजे रैयत सिकदार कोई न रहसियो हट पट्टन बाजार हुक्मी टहसियो पक्के बंक द्वार मूर्ख जाने अपने दर्ब भरे भंडार रीते एक खणे।

पौड़ी आपे कुदरत साज कै आपे करे विचार एक खोटे एक खरे आपे परखण हार खरे खजाने पाई है खोटे सटी है बाहर वार खोटे सच्ची दरगह सुटी है किसे आगे करह पुकार सत गुर पिछे भज पवह एहा करनी सार सत गुर खोटे हो खरे करे शब्द सुवारन हार सच्ची दरगाह मनियन गुर कै प्रेम प्यार गणत तिना दी को क्या करे जो आप बख्शे करतार श्लोक महला पहला।

साध ना जानिया, विण नावै दुख पाए आवण जानिया। नानक पारख आप जिन खोटा खरा पछाणिया। श्लोक महला पहला।

जन्म गवाइए। विण नावै सब विज पैजै खाइए, सच्चा शब्द साला ही सच सुमाइए। विण सतगुर सेवे नाही सुख निवास, फिर आइए दुनिया खोटी रास कूड़ कमाइए। नानक सच खरा साला ही पात स्यों जाइए। श्लोक महला पहला। तुद भावै ता वावह गावह, तुद भावै जल ना वह। जा तुद भावह ता करह विभूता, सिंगी नाद वजावह। जा तुद भावै ता पढ़ै कतिबा, मुल्ला सेख कहा वह। जा तुद भावै ता हो वह राजे, रस कस बहुत कमावह। जा

क्रोध विसवधाया, भगत करण हर चाकरी, जिनी अन दिन नाम त्याया, दासन दास हुए कै, जिनी विचो आप गवाया, ओना खसमा कै दर मुख उजले, ओना खसमै कै दर मुख उजले, सच्चे शब्द सुहाया। श्लोक महला पहला। सुबाही सालाहा, जिनी त्याया एक मन, से पूरे साहा, वक्त है ऊपर लड़ मुए, वक्त है ऊपर लड़ मुए, दूजे

तहीं प्रकाश हमारा पहयो, पटना शहर बिखै पौलयो। तन तन सहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज साहिब कमाल, जिन्हां दा प्रकाश पुरब सारे संसार दे विच बड़ी श्रद्धा भावना नाल मनाया जा रहा है, मना रहे हां। कलगीधर पिता जी जदों साहिब जी दा आउणा पटना दी धरती ते साहिब जी दा प्रकाश होया ते कहिंदे ने पीर भीखण साह जिहड़ा अंबाले दे नज़दीक बसदा है, अज सिजदा चढ़दे पासे नूं कर रहा है। नाल दे संगी साथी हैरान हन, अज पीर जी नूं की हो गया है। आपां वेंदे हां क्योंकि ये लहिंदे पासे नूं सिजदा करदे हन, पर अज पीर भीखण साहिब बार बार सिजदा कर रहा है। जदों नाल दे संगी साथियों ने पूछा, पीर जी की गल, ठीक हो, अज आप जी चढ़दे पासे वल सिजदा कर रहे हो? कहंदे ने जिसनू मैं सिजदा कर रहा हां इस दुनिया दा मालक, वो अज पटने दी धरती ते उसने आउणा कीता है। कोई बंदगी वाली रूह, जुड़ी हुई रूह, जिसनू पता है, जिदे मन विच तरला है कि मैं उस परिपूर्ण परमेश्वर प्यारे नू मिलना है। बंदगी तां आपां सारे करदे हां, पर बंदगी इहो जी होवे जिदे नाल पता लग जाए कि मेरा मालक किथे है, नेड़ा है दूर ना जाने, नित सारे संभाले, नेड़ा है ना ही दूर। जो एहो जी बख्शिश हो जाए, पीर भीखण साहिब कहिंदे ने 3 महीने तकरीबन लगे ने तुर पए, उस वक्त इतने साधन नहीं सन, तुर के लोग की यात्रा करया करदे सन, तुर पए, तुरे जा रहे हन उस मालक दे कलगीधर पिता जी दे गुण गाउंदे दे।

सब जग उपजिया कौन पले को मंदी, ऐसे सतगुरु दीन दयाल सतगुरु। कलगीधर पिता जी बाल अवस्था विच उन्होंने निर्णय किया कि असी सारे संसार के भले लई दोस्त दोखियन पकड़ पछाड़ो, हमरे सब बैरियन संघारो। जिहड़ी बाणी लिखी है उसते नितरे ने दुष्ट दोखियां दा खात्मा किया। बाए गही की लाज अस गोबिंद दास तुहार, साड़ी रखिया साड़ी लाज रखी, हिंदुस्तान की लाज रखी। भावे अपना सारा ही परिवार कुर्बान कर दिता, दीनन की प्रतपाल करे नित संत उबार गनीमन गा रहे। दीन आख दिन जिदा कोई आसरा ना हो, साहिब नितानिया का तान आए ना जाई थिर सदा, गुरसबदी सच जान। कलगीधर पिता जी ने साडे लई साडे धर्म दे लई अपना सारा ही परिवार वार दिता है। ऐसे दीन दयाल सतगुरु जी पटने की धरती ते आउणा करदे हन। अज आपां सारे ही दिन दीवान सजने हन जिन्हां दे विच साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी की पावन बाणी आप जी श्रवण कर रहे हो। आओ अगला जिहड़ा शब्द है उस तों पढ़ के समाप्त।

0: ऊंचा सबू कन्या सबसे ऊंचा
1: राखा मन हो सरल के लिंगा हर हर नाम से भट भट लिंगा
0: मन अपने से पूरा में करना फिर कह कर कृष्ण साधना
1: सुख दुख जब सब रिश्ते का नानक पाप फूल नहीं ले पाए
0: फिर तो हम के मान स्वामी फूलों के
1: आधाओ माने पोता के हो मान सकल कटाको दे बोला
0: संत रामन आत्मन सकल कटाके अंतर जमी
1: अपने घर में जा नवा पे आपन संग आप प्रवर्ते
0: वही उससे सुनते हुए नाम कवर न जान के पूरे
1: सरम धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम निर्मल करम
0: सकल क्रिया में अंतिम क्रिया था संत मत मन ही

0: जाना मैं कुछ करता तब तक गर्व जोन में फिरता हूँ।
1: तारे गुरु ले
0: मतलब मो मगन धन माए तब लग धर्म राय जय से जाए
1: पाते
0: नानक होवत इतना आवा माया पाचा पावा
1: विद्या के करे नावे सब सब मरे
0: बिना सब तू नहीं तू राजा सगुन लोग विशेष साजा
1: राम रंग सरब सुख होए
0: संत रावण आपने और सला सला नाम के हाथ जाता
1: रावण करने यार इसके हाथ ना विचार
0: जैसे देख करे तैसा हो गए अपने आप रंग सुने
1: जो कि तीनों स्वप्न रंग सबसे दूर सबु के संग
0: दूसरा देखा करे वो देखे आपा एक आपा या
1: जिससे आवे न जावे नाम सजी रहा समाये
0: आप जैसा समझा यार आपके रखा सबका साथ है
1: आप तीनों आत्म विस्तार सबके शिक्षा होकर
0: निहारिता
1: पर निहार हो सब करे रंग पाल
0: मैं अपने माए नानक कह न जाए
1: सत्य सत्य सत्र स्वामी गुरु प्रसाद कीने वी
0: सत्य सत्य सत्य सब चीना मरे के बिल्ला चीना
1: भला भला भला तेरा रूप मेरा सुंदर अपार
0: निर्मल निर्मल निर्मल तेरी वाणी कर सुनी श्रवण

0: अपनी कृपा जित आप करे नान सो सेवक गुरजी मंगे
1: सो
0: सतगुर जित विजय वरना अनेक बार गुरु को बल जाओ पार ब्रह्म एक आप नहीं कई परम
2: का